0: access to all.
1: Hari sir, म लक्ष्मी भुसाल सुनिराछु रेडियो एनआरएन 99.1.

0: रेडियो एनआरएन 99.1
1: हर विषयमा चारो बहस नेपाली बहस यस नेपाली बहसका साथमा प्रीति तयारी चौचौ ग्लोबल फाइनेंस बैंक सबैका लागि बैंक
2: डिस होम इन्टरनेट